0: कार्पोट कोम्बो शिवची और कार्सिसी चासिसी जी और सुर कार्पो चेतान दी डबर सिचे काब जी दी सिंग दो काब और दी कोनी चमा ने चिबले कोन को सिपसी जी ने तो
1: चमा
0: लोमा चिंची से फिर आशा ता तो वीडा है यू दिया टेन टेन दो वीडा बाको ता जो शाओ दू दो गुंग शाओ फिर आ फिर आ
2: 那么这个海拔太高了的话，这个没有。思路生长于海拔2400米至4800米之间，这个季节枝叶中的挥发油含量达到顶峰。加入香中，能产生清冽悠长的草本气息。龙日将错新研发的藏香配方中，这一味正是点睛之笔。